मकार बनाया जल कथे थे इंदामनी नारा को बाढ़ किरा आसंखू नहीं खुदों का खिदाऊं को दे दे जो खुशा आनंद दुनिया